ધારું વાજે પાંચ શબ્દ તેત કાર સપાગે શબ્દ વાજે કલા જેત કર તારિયા પાંચ દૂત તોદ વાસ કીતે કાળ કંટક માર્યા તોર કરમ પાયા તુદ જેન કૌ સે ના મહર કહે લાગે કહે નાનક તાં સુખ હોવા તેત કાર્યા ન હદ વાજે आनंद सुनो वट पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची वाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सदगुर रहया पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनह तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पयो सत संतोख विचारु अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारु जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उधारु ए वस्त तजी न जाय नित नित राखुर तारु तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारु श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनू जो कीतोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक ना मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक ना मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर।

जन्म मरण के मिटे बिसूरे, भ्रम पै तरे छुट्टे पै जम के, घट घट एक रहया पर पूरे।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभंगुर प्रसाद दर्शन देश जीवांगुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रा मेरा यह बेनती सुन प्रा मेरे दे नाम करे अपने चेरे अपनी शरण रा प्रवदाते गुर प्रसाद किन बिले जाते सुनो बिनो प्रा मेरे मीता चरण कमल वसे मेरे चीता नानक ए करे अरदास वेसरना ही पूर्ण गुणदास दर्शन प्यासी दिन से रात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर में लिया नानक हर संगमीत सो का होटल गुरु सिर्शन परस्या गुरु कै जन्म मरण दो जाए होवे शिव तक समी नूर अरसों कुरसों चटिया तोद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर शाह देशाह जिस पास बैठिया सोई है सबना दा वेसा सजन सचा पातशाह सिर शाम देशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सतनाम धन वाहेगुरु जी सोरठ महला चौथा पंच पदा आचार्य

इन सतगुर सेव शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर तरिया। हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक, चाहक तत् समत धरे।

विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद गणी खेडे बिडाणी।

सतिया मन संतोख उपजै दिन कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा शुभ करे संसार।

बॉडी से किसी संतोखी इन सचो सत्याया ओनी बंदे पै नरख कर सौ कर धर्म कमाया ओनी दुनिया थोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया तुम शिशि अगला नित देव जड़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: से श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड्डिया खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेते आर जा पढ़िया जेते सास नानक लिखे एक गल होर हूं मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ पविया ते तो लविया बहु पेख किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरै अहनस कह रै मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता।

पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोह वार, जति सदा वह जुगत न जाने है छड बह घर बार, सबको पूरा आपे हो वह घट न कोई आखे, पत प्रवाणा पिछे पाइये ता नानक तोले।

0: जात में जोत, जोत में जाता, कल कला पर पूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत वाले हो, जिनकी तीसो पार पिया। कहो नानक करते किया बाता, जो किस करना सो कर रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दं, ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ब्राह्मण है, क्षत्रिय शब्दं, सूर शब्दं, शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं।

0: जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझे ताहे, सात जुग रस संतो का धर्म ग्रथ वा, त्रित रस जते का जोर ग्रथ वा, द्वापर तपे का सत ग्रथ वा, काल जुग रथ गन का कुड़ गे रथ वा महला पहला।
1: साम कहे सितंबर स्वामी, सच में अच्छे साच रहे, सबको सच समावे, रिग कह रहे आ पारपूर।

कान कृष समझादम पया पार जात को पी लया बिंद्रा बन में रंग किया काल में वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अलोह पया नील वस्त्र कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया।

चौके पर किसी न जान देख चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मात पिट है वे मात पिट है यो अन असाडा पिट है।

तुमरी कृपा मैं सुख कने कोई न जाने ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास तुमरी गत मित तुम ही नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भौत जी सहाय वार श्री भौत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरख गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंदू सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जे डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कारण आउन दे आवे ताए सब ताई होई सहाय दसवें पातशाह तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब ताई होई सहाय तसो बादशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालस सब बोलो जी वाहे पंजा प्यारिया चौं साहबजादिया चालिया मुक्तिया अठिया जपिया तपिया शही सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई दे के अंडट कीता तिन्हां गुरमुख प्यारिया सच्यारिया की कमाई का ध्यान तर खालस सब बोलो जी वाहे जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म सिह दिते बंद बंद कटवाए चरखड़िया ते चढ़े आ रहा नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विचों बाले गए खोपरियां लोहियां गुरद्वारिया की सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां तेरे पाणे नूं मिठा करके मन्निया असहे ते कह सहार दे शीदो सिकिद के सा सुवासा संग नभाई तुम नहीं आ रहा तिना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां की कमाई का ध्यान तर खालस सब बोलो जी वाहे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तर खालस सब बोलो जी वाहे प्रथम खालस जी की अरदास है जी सरबत खालस जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रिछे रिया ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहेब जी सहाय खालस जी के बोल बाले खालस सब बोलो जी वाहे सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालस जी के बोल बाले खालस सब बोलो जी वाहे सिखा दा मन नीवा मातु जी मादे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामे गुरु ग्रीव निवास जी पातशाह पांदे सदा सहाय दतार पिता जी ओ श्री ननकाणा साहब और गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी ने बख्शो जी निमाणिया दे माण निताणिया दे ताण ने उट्टिया दी उट ने आसरे दे आसरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जी आप जी अपार बख्श रहमत कृपा का सदका अमृत वेले सजे दीवाना विच आप दी लाही बाणी दे पाठ उपरंत श्री आस सजगवार कीर्तन और सेवा करदे हां होईआं भुल्लां बख्श लैणियां बड़ी सोहणी बाणी का भाव सरबत संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणा सरबत संगतां दी हाजरी तिल फुल बैठावां दर प्रवान करनियां दरों करों सिखी भरोसा नामदान बख्शना परिवारां विच सुख वरताउणा सरबत संगतां दे कारोबारां विच बरकतां बख्शिश करनियां पंथ दे सिर ते मेहर भरिआ हथ रखणा पवित्र हजूरी विच कड़ाह प्रशाद देगा हाजरा दर प्रवान होवै परवान दे संद वरताउण दी आग्या बख्शो मेहर करो पवित्र हुक्म नामों बख्श के निहाल करो जी से गुरम प्यारे में लो जिन्हां मिलिया तेरे नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ।

सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जां तिस भावै तां हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी,

होंगे, जुगा जुगा टाल धर्म का जयकार। खालस जी के बोल वाले खालस जी से बोलो जी वाह। सिखाना मानी मां मात उची मादे राखे आप काल पुरख अंतर जामी गुरु गरीब निवास जी पातशाह पांदे सदा सहाय दार पिता जीओ। श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारे जिन्हों तो पंथ न छोड़या गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नख्शो जी। निमाण्या माण नताण्या ताण ने ओटिया की ओट ने आसरे ने आसरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जी आप दी अपार बख्शे रहमत कृपा का सदका अमृत वेल तो आप दे हजूर दीवान सजे सजे दीवाना च आप दे हर जा सोए ने कीर्तन कथा ढाडी वारा त्याह की सेवा करद हुई फुला बख्श लैनिया जथिया चढ़ती कला बनी पढ़ी सुनी बाणी का भाव सरबत संगतां दे हिरदिया विच वसाउणा। सरबत संगतां दी हाजरी तेल फुल पेटावां रस्ता आदिक अपने दर ते प्रवान करनी आ। सिर ते मेहर भरिया थकड़ा तंदुरुस्तियां बख्शनिया परिवारां विच सुख वरतौणा। सरबत संगतां दे कारोबारां दी बरकतां बख्शिश करनी आ। पंथ दे सिर ते मेहर भरिया थकड़ा सेवादारां नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी। लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे बीबी जसविंदर कौर का पुत है भाई गुरप्रीत सिंह नवीन कौर का पुत्र काका नीको सिंह का पहला जन्मदिन मनाउंदे बच्चे की चढ़ती कला लई शुकराने वजो परिवार का आप दे दरकर की हाजरी भरद अरदास बेनती करद हो बेअंत माया अरदास करवाउंदे ने मेहर करनी दाता जी परिवार के सिर ते मेहर भरिया थकड़ा परिवार में सुख वरतौना बच्चों सिर ते मेहर भरिया थकड़ा तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनिया परिवार के कारोबारों की बरकतां बख्शिश करनियां। काका नीको सिंह के सिर ते मेहर भरिया बच्चे ने गुरसिखी दी माता पिता आग्या करी बच्चा देश कौम का सेवक शुभ गुण उच्च विद्या दाता दीर्घायु बख्शिश करनी बच्चे नूं अपने जीवन दे चार प्रकार दे सुख प्रदान करने वड्डियां उमरां बख्श के निहाल करना। आने वाले समय दाता जी बच्चे नूं तंदुरुस्ती ते रोगता बख्श के अपने चरणां नाल जोड़ के चढ़दी कला दा जीवन बख्श के निहाल करना। अंग संग सहायो के वर्तना परिवार की सेवा थाए पौनी शुभ भावना पूरियां करनियां। नडाला जिला कपूरथले दीआं संगतां वल्लों अखंड पाठ कीर्तन अते गुरु के लंगरां दी सेवा हो रही है मेहर करनी नगर दे सिर ते मेहर भरिया थकना नगर नूं चढ़दी कला बख्शनी परिवारां विच सुख वरतौना सेवा थाए पौनी शुभ भावना पूरियां करनियां। इस दीवान दी समाप्ति है मेहर करो पवित्र हुक्मनामा बख्श के संगतां नूं अते नीको सिंह नूं दाता जी आशीर्वाद बख्श के निहाल करो जी। सुख होवे नाम चेता आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की साहब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा खुआरोए सब मिलेंगे खुआरोए सब मिलेंगे बचे शरण जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

भार हाय बिन शब्द बूझ न पाए गुरमति प्रगास होए सच रहल विलाय तिथे काल न संचरे ज्योति ज्योत समाए तू है साजनो तू सुजान तू अपे मिलनहार गुरु शब्दि सलाहिए अंत न पारावार तिथे काल न पड़े जिथे गुरु का शब्द अपार हुक्मी सभी उपजय हुक्मी कार कुमाहे हुक्मी काले वसै हुक्मी साच सुमाहे नानक जोत सुभावे सो थिए इन्ना जनता वस किछ नाहे श्री राग महला पहला मन जूठै तन जूठ है जिहवा जूठी होए मुख झूठै झूठ बोलना क्यों कर सुचा होए बिन आभु शब्द न मंजिए साचे ते सच होए मुंदे गुण हीणी सुख केहे पिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख नेह रहा हूं पिर परदेसी जे थिए धन वांडी चूर हे ज्यो जल थोड़े मछली करण पलाव करे पिर पावे सुख पाइया जय आपे नदर करे पर सलाही अपना सखी सहेली नाल तन सोहे मन मोहे आरती रंग निहाल

तिस बिन घड़ी न जीवो बिन नावे मर जाओ। मैं उंदल नाम न विसरै टेक टिकी घर जाऊं। गुरु जिना कह उंदला चेले ना ही ठाओ। बिन सतगुरु नाव ना पाईऐ बिन नावे क्या सुआओ। आए गया पुछता बना ज्यो सुंजाए कर काओ। बिनावे दुख देहोरी ज्यो कलर की तों की पीतों। तब लग मैल न पाईऐ जब लग साच न चीत। शब्द रपे कर।

पूछो अपने गुर पुचकार, कुमाऊं शब्द सलाही मन बसे हो मैं दुख जल जाओ। सहजी हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाऊं, शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार। नाम सलाही सत सदा हर राखे उतार, सो क्यों मनु विसारी है सब जिया का आधार।

चारो बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्म बारो बार सब सलाहे आपको बडो बडेरी होए। गोर बिनिया पन चीनिया कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पसाणी है हो मैं करे न कोय श्री राग महला पहला बिन फिर धन सिंगारी है जो बन बाद कुआर ना माने सुख से जड़ी बिन फिर बाद सिंगार। दो कोणों दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिलाए रंग होए रहाओ। गौर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पर सेजड़ी गुड़ा हेत प्यार। गुरमुख जान सियाणिया गुरमेली गुण चार सच मिलो बर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच बिकसिया कीमत कह न जाए हर बार घर सुहागणी निर्मल सच नाए मन।

के नहीं आवे के नहीं जाए। शब्द पुषण रबू रह ना तिस काल संताए, सैव तुल न तुलिय कथ न पाया जाए, व्यापारी बन जा रे आए। भजो लिखाए कार कमावे सच की लाह मिल रे जाए, पूंजी साची गुण मिले ना तिस तिल ना तुम आए।

आपो तो लाइन तोल सीम पूरे पूरा तोल। कथने कहना छुटिया ना पढ़ पुस्तक भार काया सोच न पाइया बेनो हर भगत प्यार नानक नाम ना बिसर मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जी मिलै पाई रतन विचार मन दी जय गुर पाई अपने पाई है सर्व प्यार मुक्त पदार्थ पाई है। अवगुण मिटन हार पाई रे गुण बिन ज्ञान न होए पूछो ब्रह्मे नर दे वेद व्यासे कोय रहाउ ज्ञान ध्यान तो नहीं जानिए कथ कहावे सोए सफल बरखरिया वला छाव कनेरी होए। लाल जिवे हर मान की गुर भंडारै सोए गुर भंडारै सपल्यो बिरख हरियावला छाव कनेरी होए। लाल जिवे हर मान की गुर भंडारै सोए गुर भंडारै पाइया निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिया पूरे कर्म अपार। सुख दाता दुख मेटनो सतगुरु सगर संघार भवजल बिकम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना बेड़ी ना तुलहड़ा तिस वंश नलार सतगुर पै काबू तन नदरी पार उतार। एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाय जी बजलो जलावनी नाम न जप रिसाय। कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पुछताय मेरी मेरी कर गए तानो तानो कलत न साथ बिन आवे तानो बाद है भूलो मर गयाथ। साचो साहब सिबिया गुरमुख कथो अकाथ आवे जाय पवाइया पइये किरत कुमाय। पूर्व लिखिया क्यों मिटिया लिखिया लेकर जाय बिन हर नाम न छुटिया

अभिमान। तिस बिन मेरा को नहीं, जिसका जियो प्राण हो मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभिमान। स्यो प्रीत कर जैसी जल कमल लहरी नाल पुछाड़ी है भी बिकसे स्नेह। जल मैं जियो पाए कै बिन जल मरण तनेह। मन रे क्यों झूठे बिन प्यार गुरमुख अंतर रब रहे आ बख्शी भक्त भंडार। रहाओ रे मन ऐसी हर्ष प्रीत कर जैसी मछली नीर। रे मन ऐसी हर्ष प्रीत कर ऐसी जात्रक मेह। सर भर थल हरिया वाला ही बंदा बूंद ना पवी। के कर मिला सो पाई किरत पे आंसर देहे।

करी, अनदन अग्न जलाय। हर नामे तुलना पूजी, जी लख कोटि कर्म कमाए, अर्द शरीर कटाई ऐसर करवत तुराए। तन है मचन चल गाली अपी, मन ते रोग न जाए। हर नामे तुल न पूजी, सब डिठी ठोक बुझाए, कंचन की कोट दुख करी। बहु हैबर गै वरदान, भूम दान गौआ कणी पी, पितर यंत्र गर्भ गुमान। राम नामन विद्या गुर दिया सच दान, मन हठ बुद्धि केतिया केते वेद विचार, केते मंधन जी के गुरमुख खोज द्वार रहाओ। एकांडे सचो रे सब कोई उपर सच, आचार सब कुचा के नीच न दिसे को। एक ने भांडे साजी एक चनन थिन लोए, कर्म मिले सच पाईऐ तुर बख्शना मिटे कोय। साधु मिले साधु जन संतोख, वसे गुर पाए कथ कथा विचारी है। जे सतगुर मैं सवा पी, अमृत संतोख पी अदर के पंदा जाए। घट घट बाजे किंगरी वंदन शब्द सुभाए, बेले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए। नानक नाम न विसरै, छूटे शब्द को कमाए। श्री राग महला पहला, चित्ते दिसे धौल हर बगे बंक द्वार। कर मन खुशी उसारे आऊं, दूजे हित प्यार। इंद्र खाली प्रेम बिन टह ढेरी, तन शार भाई रे तन तन साथ न होए।

जग माहे, सबो जग काजल कोठड़ी, तन मन दी इक सुआहे। गुरु राखे से निर्मले, शब्द निवारी पाहे, नानक त्रिय सच नाम सिर साहा, पातशाह मैं हर नाम न बिसरे, हर नाम रतन बिसाहा। मनमुख भाव जल पच मुए, गुरमुख अंतरे अथाह, श्री राग महला पहला कर दूजा, मुकाम करूं घर बसना, निस नित चलने की धोखा।

नाम में रहाओ। जोगिताया सनो कर जोगिताया सुनो कर रहे वह मूला वह मुका पंडित बखाणी पोथी सिद्ध वह देव स्थान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सिख पीर सलार दर कूच कूचा गर गए अवरे के भूल चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच घड़ी मोहत के चलना दिल समझ तू पे पहुँच सब दाह माहे बकाणिया बिरला था बुझे कोय नानक खाने बेनती जल थल मेल सोय हलो अलक अगम कादर करण हार करीम सब दुनिया बन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिस नो आखिया जिस सिस ना हो भी लेख असमान धरती चल सी मुकाम ओही एक दिन राव चल निस सस चल तारका लख पलोए मुकाम ओही कह नानक सच पगो महले पहले सतारहां अष्टपदिया श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदिया को ओंकार सतगुर प्रसाद गुरम कृपा करे भगत कीजे बिन गुर भगत न होए आपे आप भक्तहीन काहे जग आया पूरे गुर की सेवना किन्नी व्यर्था जन्म गवाया रहो आपे हर जग जीवन दाता है आपे बख्श में लाए जी जानते क्या बेचारे क्या को आको सोनाए गुरमुख आपे दीवड़े आई आपे सेवक राय देखो कोटां बो मोहे लोवाणा चल दिया नाल ना जाई सतगुर सेव गुण दान पाया तिसकी कीम न पाई प्रभु सखा हर जियो मेरा अंते हो सुखाई पेड़ जग जीवन दाता मन मुख पात गुबाई बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न पाए काई हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंतर गया पुछताई पेड़े जग जीवन दाता गुरमत मन बसाया आंदन भगत करे दिन राती होमे मोह चुकाया जे स्यों राता तैसो होवे सच्चे सच संभाया आपे नदर करे पाओ पा लाए गुर शब्दी विचार सतगुर सेवी है सहज उपजे होमे तृष्णा मारे हर गुण दाता सद मनो वसे सच रख्या उर धार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निदान हर मन बसे हो मैं दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया उस सद बले हारे जाओ अपने मनो चित कहे कहाई बिन गुरु आपन जाई हर जियो भगत बसल सुख दाता कर कृपा मन बसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे बड़ियाई श्री राग महला तीजा होमे कर्म कमाव दे जम डंड लगे तिन आए जे सतगुर सेवन सेव बरे हर से लिव लाए मन रे गुरमुख नाम ते आए गो तुर पूर्व करते लिखे आ तिना गुरमत नाम सुमाए रहो बिन सतगुर प्रतीत न आवी नाम न लगो पाओ सुपने सुख न पावी दुख मह सबै सुमाए जी हर हर कीचे बहुत लोचिया कीर्तना मिटे जाए हर का भाणा भक्ति मन्या से भक्त पैदर थाए गुर शब्द दड़ावे रंग स्यो मन कृपा लिया न जाए जे सो अमृत निरी पी विख फल लग ताए से जन सचे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का भाणा कमा मंदे बिख हमें तज विकार मन हठ किते उपाय न छूटिया सिमरत शस्त्र तो हो जाहे मिल संगत साधु बुरे गुर का शब्द को माहे हर का नाम निदान है जिस अंत न पारा वार गुरमुख से सोंदे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और न कोई गुर पर सादी पाई है करम प्राप्त होए श्री राग महला तीजा
ਪੰਖੀ ਵਿਰਕ ਸੁਹਾਬੜਾ ਸੱਚ ਚੁਗੇ ਗੁਰ ਭਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੇ ਸਹਿਜ ਰਹੇ, ਉਡੇ ਨ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਾ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਏ, ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕੁਮਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਰਚੈ, ਹਰ ਨਾਓ ਰਹਾਓ, ਪੰਖੀ ਵਿਰਕ ਸੁਹਾਵਣੇ ਉਡੇ।

ग्रह सत कुटुंब पलटियां कदे हरख कदे सोग गौण करें। चौहो कुंट का घड़ी न वैसन सोए चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया कृपण लो प्यार चारे किलबिक उन अगं किए हुआ उसर सिंघार। पोथी गीत कवित किछ कदे न करण तरिया चित आवे उस पार ब्रह्म तां निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार मोख अगर बिचरे तपे तपीसर जोगियां तीर्थ गबन करे। खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नहाए रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए।

चाय लग रहे अचित न आयो पार, ब्रह्मोता सर्प की जून गया। बहुत तनाढ़ चारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग परीत, लश्कर तर्क सुबंध बंद जियो जियो सगली कीत। चितनायो पार ब्रह्मता खड़र सा तल दीत, काया रोग ना छिद्र किछ ना किछ कड़ा सोग, मृत नया भी चित तिस अहनस भोगै भोग। सब किश की तोण अपना जी ना संकत रिया, चित न आयो पार ब्रह्म जम कंकर वसुम परया, कृपा कर जिसम पार ब्रह्म हो वे साधु संग, ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यो त्यो हर स्यो रंग। दोहा सरिया का खसम आप अवरण दूजा था, ऊं सतगुर तुठे पाया नानक सच्चा नाऊं, श्री राग महला पंजवा कर पंजवा जानो।

कहो वैसो करे विचार, हर त्यावे मन लिव लाई, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल न कबहू खाई, तीजे पहरे रहण की बन जा रिया।

गलत कर्म को माहे मोहलत कर दिनी कर्म कुमाने जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बेनंता तिन पितर प्रभु संजोया कर्म सुकर्म कराए आपे सुजंत बस किच नाहे कहो नानक प्राणी पहले पहरे तारू पाय ताई उधर माहे दूजे पहरे रण के बुन जारे आ मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पुछाणी बन जारे आ मित्रा मन मता हमेवा बुरा भला ना पछाण प्राणी आगे पंथ कराराम पूरा सतगुर कबू न सेवे आसर ठंड जम जंदारा धर्म राय जब पकर सुम बवरे तब क्या जवाब करे।

चरण कमल चित लाए। जल थल पू रहया बनु बारी घट घट नदर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम। जाले मन प्यारे जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे, मन प्यारे जी ओ मित्रा बिख सागर संसारे।

संत समझाई अर प्रेम भक्त मन लीना। एको श्री राग की संत माला पंजवा ओंकार सतगुर प्रसाद डखना हाथ।

कोई हरि गुर शरणाई पाई बन जा मित्रा बड़ भाग प्राप्त हुए रहा। संत जना बिन भाइया हर कने ना पाया नाओ। बिच होमै कर्म कमाव दे ज्यो बसुआ पुत ननाऊ पिता जा तू ता होई ऐ गुर तुठा करै पसाऊ। बड़ भागी गुर पाया हर अहनस लगा पाओ। जन नानको ब्रह्म पछाणया हर कीरत कर्म कमाओ। मानो हर हर लगा चाहूं गुर पूरे नाम दृढ़ाय हर मिलया हर प्रभ नाऊ रहाओ। जब लग जोबन सास हैं तब लग नाम ते आए। चल दया नाल हर चल सी हर अंते ले छुड़ाए। हो बलिहारी तिन को जिन हर मन बूठा आए। जिन्नी हर हर नाम न चेते ओ से अंत गए पुछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत लगाए। बड़ भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वाले हर आपे भरम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से बिरलें के हो बलिहारी तिन को जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर बुठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुरु सरनाई भज पाओ। सिंधु सब किल बिख दुख पर हरे रहाऊ। घट घट रमैया मन वसे क्यों पाइये कित भत। गुर पूरा

प्रभति उत्पत्त रहा जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक भाई बन जा रहा मित्रां गुर हर हर नाम प्रगास धन धन बणज व्यापारी।

सप्तीप सप्त सागरा नाव खंड चार वेद दास अष्ट पुराण हर सबना बिच तू बरतदा हर सबना भाणा सब तू जय ते आवे जी जंत हर मार्ग पाण जो गुरमुख हर आराध दे तिन हाओ कुरबान तू आपे आप बरतदा कर चोज बढ़ाणा श्लोक महला तीजा।

सूडरजी पाप कमा मदा धर्मी विगसीत तू सच्चा सेव ने आओ सच तांडरी है कीत जिन्ना नानक सच पछाणे से सच रलेत महला तीजा कल मुझलो सनम सुबाणी है कागद भी जल।

मोहल्ला तीजा। हुकुम ना जाने बो तारो वे अंदर धोखा नींद न सोवे जी धन कसमे चले रि जाई दर घर सोभा महल बुलाई नानक करमी एह मैथ पाई गुरपुर सा दी सा समाई। मोहल्ला तीजा।

समाय, पौड़ी सृष्टि उपाय सब तुद आपे रिजक संभाहे। आ एक बल छल कर कै काब दे मोह कूड़ कुस्त तिन्नी ढाया। तुद आपे पावे सो करें तुद उतै कम लाया। एक न सच बुझायो न तिन्ना य तुट भंडार दिवाया। हर सीती खाहे तिन्ना सपलाय अचेता तंत डाया। श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित भेद बखाने। माया मोह सुवाय दूजे पाए हर नामो मन मूर्ख मिले जिन जियो पिंड दिता। दूजे पै हर नाम भी सारे आ मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता। तिस कबू न चेतै जो देंदा रिजक सुमाए। जम का फाहल गल हो न कटिए फिर फिर आवै जाए। मन मुख कछु न सूझेन्द ले पूर्व लिखिया कमाए। पूरे भाग सतगुरु मिले सुख दाता नाम बसे मन आए। सुख माने सुख पैनना सुख है सुख बिहाए। नानक सो न मनु न बिसारी है जित दर सच्चे सुभा पाए। महला तीजा सतगुरु सेव सुख पाया सच नाम गुणतास। गुरमति आप छाने राम नाम प्रगास। सचो सच कमावण वड़ियाई बड़े पास। जियो पिंड सब ते सदा सिफ्ट करे अरदास। सच्चे शब्द सुलाहना सुखे सुख निवास। जप तप संजो मन्ने माहे बिन नावे त्रिक जीवास। गुरमति नौ पाई मन मुख मोहे विनाश। ज्यो पावे तू रख तू नानक तेरा दास। पौड़ी सब को तेरा तू सब सुदा तू सब नाराज। सब तुदे पशु मंग दे नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब कुछ मिले एक ना दूर है पास।

ज्यों सूरज रहण किराकी अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन सो देखिया गुरमुख आकी। श्लोक महला तीजा। सतगुर सेवे अपना सो सिर लेखै लाए विचों आप गवाए कै रहन सच लिवलाए। सतगुर जिन्नी ना सेव्यो तिन्ना बिरथा जन्म गवाए।

प्राणी जरा मरण भाओ विसर गया, कुटुंब देख बिकसै कमला ज्यो कर घर जो है कपट नरा। दूड़ा आयो जमै तना तन आग लड़ै मैं रण न जाई, कोई कोई साजन आय कह मिल मेरे बीठ लाल बावड़ी बलाय। मिल मेरे रमैया मैं लेह छडाई रहाओ, अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर मैं। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया, माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलिसया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी रव सस तहना, प्रवेशन माया मोह तब बिसर गया ता तजी अले संसारन। आज मेरे मन प्रगट पया पेखी अले तरम राओ, तह कर दल करन महाबली तिन आग लड़ै मैं रहन न जाए। जे को मुँह उपदेश करत है ता वन त्रिण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सब किस जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सनोरे पंडिया। अब किस कहन न जाई सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे त्रिपुण में खली लाई। राजा राम आनंद किंजरी बाजै जाकी दिष्ट नाद लिव लागै रहाओ। पाठी गगन संजया अर चुंजया कनक कलश इक पाया, तिसमें तार चुए या तो निर्मल रस में रसन चुआ। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया, तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया प्रखोत्तम कहो कबीर रंग राता।

संत मिलै। आवो संत मैं गल मिलाइया, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है। हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वडभागी हर संत मिलाया, गुरपुरै हर रस मुख पाया। भागहीन सतगुरु नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो। आप दयाल दया प्रभतारी, मलहो मैं बिकिया सब निवारी। नानक हट पट्टण विच काया, हर लै दे गुरमुख सौदा जियो। माज मल्ला चौथा हों गुण गोविंद, हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई। हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुरु हर रस कीचै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता। पाप मिलोआ मैं वरतोवा, मिल हर जन हर रस पीचै जियो। सतगुरु दाते नाम दृढ़ाया, वडभागी गुर दसन पाया। अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपुरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए, मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरमत हर नाम परिचै जियो। माज महला चौथा आवो भैणे, तुसी मिलो प्यारिया। जो मेरा प्रीतम दसे तिस कहो वारिया। मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हो, सतगुर विटो कमाइया जियो। जय जय देखा तै ते स्वामी, तू कट कट रवे अंतर जामी। गुरपुरे हर नाल दिखाया, हो सतगुर विटो सत वारिया जियो। एको पवन माटी सब एका, सब एका जोत सबाइया। सब इका जोत वरतै भिन भिन नार लीयै, किसै नार लाइया। गुरप्रसादी एक नदरी आया, हो सतगुर विटो बताया जियो। जन नानक बोले अमृत बाणी, गुरसुखा कै मन प्यारी। भाणी उपदेश करे गुर सतगुरु पूरा, गुर सतगुरु पर उपकारी है जियो। सत चौपदे महथे चौथे के, माज महला पंजवां चौपदे घर पहला। मेरा मन लोचै गुर सर संताई, बिलप करे चातर की न्याई। त्रिखा न उतरे सांत न आवै, बिन सत बिन सरसन संत प्यारे जियो। हां कोली जियो कोल कमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो रहाओ। तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तन बाणी। तिर होवा देखे सारंग पाणी, धन सो देश जहां तू वसिया। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हाओ कोली हो कोल कमाई, गुरु सज्जन मीत मुरारे जियो। रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल जग होता, हुण कद मिली है प्रे तुद भगवंता। मोहे रहण ना विहावै, नींद ना आवै, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। हो कोली जियो कोल कमाई, ते सच्चे गुरु दरबारे जियो। रहाओ भागवा गुरु संत मिलाया, प्रभ अवनासी कर मैं पाया। सेवकरी पलच सन विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हां कोली जियो कोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। रहाओ राग माज महला पंजवां, सारत सुहा विज तुद समाली। सो कम सुहेला जो तेरी काली, सो रिदा सुहेला जित रिदै तू उठा। सबना के दा तारा जियो, तू साजा साहेब बाप हमारा। नवनत तेरे अखुट भंडारा, जिस तू देह तो तृप्त अगावै। सोई भक्त तुम्हारा जियो, सबक वासै तेरी बैठा। कटकड़े अंतर तू उठा, सबे सा जीवाल सदायन। तू किसै नत सह बहारा जियो। तू आपे गुरमुख मुक्त कराहे, तू आपे मनमुख जन्म पवाहे। नानक दास तेरे बलिहार है, सब तेरा खेल दसारा जियो। माज महला पंजवां, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सतकेला, सहज गुफा मैं ताड़ी लाई। आसन ऊच सवारिया जियो, फिर अपने गृह मैं पाया। फिर घिर अपने गृह मैं आया, जो लोड़ी दा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संतो, गुर अनपोद पुरख दिखा रहा जियो। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे पोगा। आपे तख्त बह सत न्याई, सब चुकी कूक पकारिया जियो। जे हा डिठा मैं ते हो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया। ज्योति ज्योत मेली सुख पाया, जन नानक एक पसारिया जियो। माज महला पंजवां, जित कर पिर सुहाग बनाया। तित कर सकिए मंगल गाया, अनंद बिनोद तै कर सो है। जो तनकंत सिगारी जियो। सा गुणवंती सावट भागण, पुत्रवंती सीलवंत सुहागण। रूपवंत सा सुगड बिचखण, जो तनकंत प्यारी जियो। अचारवंत साई प्रधाने, सब सिंगार बने तिस ज्ञाने। सा कुलवंती सा सवराई, जो फिर कै रंग सवारी जियो। महमा तिसकी कहण न जाए, जो पर मेल लई अंग लाए। थिर सुहाग वर अगम अगोचर, जन नानक प्रेम सदारी जियो। माज महला पंजवां, खोजत खोज दर्शन चाहे। पात पात बन बन अवगाहे, निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है। जियो आण मिलावै जियो, खट शास्त्र विचरत मुख ज्ञाना। पूजा तिलक तीर्थ स्नाना, निवली कर्म आसन चौरासी। इन मैं सांत ना आवे जियो,
अनक बरख किए जप तप गमन किया धरती परमाता एक हृदय सांत ना आवै जोगी बहुत बड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया घट पीतर हर मंगल नानक गावे जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरम परदेवा अगम अगोचर अलक अपेवा दीन दयाल गोपाल गोबिंदा हर त्यावो गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी किसन मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइय होर तकते न पाती जियो निरहारी केसव निरवैरा कोट दिना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत इकाई क्याती जियो अमोघ दर्शन बेंत अपारा वड समरत सदा दा तारा गुरमुख नाम जपिए तितरिये गत नानक विरली ताती जियो माज महला पंजवा कहया करना दिता लैणा गरीबा अनाथा तेरा माणा सब किश तू है तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत कौ बल जाई जियो पाणे उजड़ पाणे राह पाणे हर गुण गुरमुख गवाह पाणे परम प्रलय बहुजूनी सब किश तू है।

सब ते मीठा जियो, जो जो पीवै सो तृप्तावै, अमर होवै सो नाम रस पावै। नाम नदान तसै प्राप्त, जो शब्द गुरु मन उठा जियो, जिन हर रस पाया सो तृप्त अगाना, जिन हर साध पाया सो नाहि डोलाना। तसै प्राप्त हर हर नाम, जिस मस्तक भागी ठा जियो, हर इक हथ आया वरसाने बहुते, तस लग मुक्त पए कनेरे। नाम नदाना गुरमुख पाईए कहो नानक विरली, डिठा जियो माज महला पंजवां। निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरै, जन्म पदार्थ गैर गंभीरै, लाख कोट कुसियां रंग रावै, जो गुर लागा पाई जियो, दर्शन भेखत पए पनीता, सगले उदारे पाई मीता। अगम गोत्र स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो, जाको खोजै सर्व उपाय, वड़पागी दर्शन को विरला पाए। ऊच अपार अगोचर।

तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना। जिथे रखे बैकुंठ दिखाई, तू सबना करे प्रतपाला जियो। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पैर तेरे गुण गाया। सकल मनोरथ पूर्ण होए, कदे ना होए दुखाला जियो। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म परमेक बठाया। जल थल महियल दह दिस वरसाया। सांत पई बुझी सब तृष्णा, आनंद पया सब ठाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा। अपने कीते नो आप प्रतपाले, पय पैरी तसे मनाई जियो। जा की सरण पया गत पाईए, सास सास हर नाम त्याईए। तिस बिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा, साहिब गुणी गहेरा। नानक दास कह बेनंती, आठ पैर तो त्याई जियो। माज मल्ला पंजवा।

अंतर तत्व ज्ञान और हों मैं मारी नाम पदार्थ नवनित पाई त्रैगुण मीट समावणे हों मैं करै ने कर्म न हो वै गुर प्रसादी हों मैं धोवै गुर प्रसादी हों मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणे हर सार सागर निर्मल सोई संत चुगै नित गुरमुख होई इसनान करै सदा नराती हों मैं मैर चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यारा हर सार वसै हों मैं मार अहनस प्रीत शब्द सच है हर सच वासा पावणिया मनमुख सदा बग मैं लहो मैं मल मल लाई इसनान करै पर मैल न जाई जीवत मरै गुर शब्दी विचार है हों मैं मैल चुकावणिया रत्न पदार्थ करते पाया पूरे सतगुरु शब्द सुनाया गुरु प्रसाद मिटिया दियारा घट चानने आप पछानने आप उपाय तै आपे वेखै सतगुरु सेवै सो जन लिखै नानक नाम वसै कटपी अंतर गुरु कृपा ते पावणिया माज मल्ला तीजा माया मोह जगत सुभाया त्रैगुण दसै मोहे माया गुरु प्रसादी को विरला बुझै चौथे पद लिवला बणिया हों वारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणिया माया मोह जलाए सो हर स्यों चितलाए हर दर मैली सोभा पावणिया रहाओ देवी देवा मूल माया सिमर सात जन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारे आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुरु प्रसादी मन वसाया जत सत संजम सच कमावै हर पूरे नाम त्यावणिया पेई अड़ै तन परम पुलाणी दूजै लागी फिर पछताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपरे सुख न पावणिया पेई अड़ै तन कंत समाए गुरु प्रसादी वेखे नाले पर कैसे अज रहै रंगराती शब्द सिंगार बनावणिया सबल जन्म जिन्ना सतगुरु आया दूजा पाओ गुरु शब्द लाया एक रब रहा घट यंत्र मिल सतसंगत हर गुण गावणिया सतगुरु ना सेवै सो काहे आया त्रिक जीवन वृथा जन गवाया मनमुख नाम न चेतना आवै बिनावै बोधक पावणिया जिन सिष्ट साधी सोई जाने आपे मिला शब्द पछाणे नानक नाम मिलिया तिन जन कहो जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया माज मल्ला चौथा आद पुरख अपरंपर आपे आपे थापे थापे थापे सब मह वरतै एक सोई गुरमुख सोभा पावणिया हो वारी जियो वारी निरंकारी नाम ध्यावणिया तिस रूप न रेखिया घट घट देखिया गुरमुख अलख लखावणिया रहाओ तू दयाल कृपाल प्रभ सोई दुध बिन दूजा अवर न कोई गुरप्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणिया तू आपे सच्चा सजनहारा भगती परे ते भंडारा गुरमुख नाम लै मन पीजै सह समाध लगावणिया अंदन गुण गाव प्रभ तेरे तुद सलाही प्रीतम मेरे तुद बिने वरन कोई साचा गुरु प्रसादी तू पावणिया अगम गोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लह मिलाई पूरे गुर कै शब्द त्याई शब्द से सुख पावणिया रसना गुणवंती गुण गावै नाम सलाहे सच्चे भावै गुरमुख सदार है रंगराती मिल सच्चे सोभा पावणिया मानमुख कर्म करे अहंकारी जुए जन्म सबा जी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर पर आवण जावणिया आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिख तुर पाई नानक नाम मिले पो भंजन गुर शब्दी सुख पावणिया माज महला पंजवा कर पहला अंतर अलख न जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम गोचर सब ती उच्चा गुर कै शब्द लिखावणिया हों वारी जीव वारी कल मैं नाम सुनावणिया संत प्यारे सच्चे धारे बटपागी दसन पावणिया रहाओ साधक सिद्ध जिसै को फिरते ब्रह्मे इंद्र त्या इन हृदय कोट ते तीसा को जय ताको गुरमिल हृदय गावणिया आठ पैर तुद जापे पवना धरती सेवक पाएक चरणा खाणी बाणी सर्वनिवासी सबना कै मन पावणिया सच्चा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सिंह जापै जिन पिया सही तृप्ता से सत्य सच अगावणिया तिस कर सहजा सोई सुहेला आनंद विनोद करे सतकेला सो त्रमंता सो वडसाहा सो जो गुरचरणी मन लावणिया पहलो देतै रिजक समाहा पिछो देतै जंत उपाहा तुद जीवड़ दाता अवरना स्वामी लवै न कोई लावणिया जिस तू तुठा सो तुद त्याए साध जनाका मंत्र कमाए आप तरै सगले कुल धारे तिस दरगै ठाकना पावणिया तू वड्डा तू उचो उचा तू बिंत अतम उचो मुचा हों कुरबाणी तेरे वंजा नानक दास दसावणिया माज मल्ला पंजा कौन समुक्ता कौन सुजुक्ता कौन सुग्यानी कौन समुक्ता कौन सुग्रही कौन उदासी कौन न कीमत पाए जियो किन मिद बादा किन मिद छूटा किन मिद आवण जावण तूता कौन कर्म कौन नहि कर्मा कौन न कहे कहाए जियो कौन न सुखिया कौन न दुखिया कौन न सन्मुख कौन वे मुखिया।

कोई कोई कोए कोए सब को तेरा तू सबना का सोए। जाके जी जंत धन माल नानक आखण बिखम बिचार। गौड़ी महला पहला। माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो बसेख। करनी है कुछ कह ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ। सरम सुरत दोए सतसर पाए करनी कामन कर मन लै साह संजोग ब्याह बिजोग सत संतो को नानक जोग। कौड़ी महला पहला। पवने पावनी अग्नि का मेल चंचल चपर बुद्ध का खेल। नौ दरवाजे दसवां द्वार बुजरे ज्ञानी एहो विचार। कथता बकता सुनता सोई आप बिचारे सो ज्ञानी होई रहाओ। देही माटे बोले पौन बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद हंकार ओ ना मुआ जो देखण हार। जय कारण तड़ तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पढ़ पढ़ पंडित बाद बिखाने। तीर्थ होंदी बस्त ना जाने हो ना मुआ मेरी मुई बुलाए हो ना मुआ जो रहा समाए। कहो नानक गौर ब्रह्म दिखाया मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी। सुन सुन बूझे माने नाऊं ताके सद बलहारे जाओ। आप भुलाए ठौर ना ठाओ तू समझावे मेल मिलाओ। ना मिले चले मैं नाल बिन नामे बाधी सब काल रहाओ। खेती बणज नावे की ओट पा पुन बीज की पोट। काम क्रोध जी में चोट नाम विसार चले मन खोट। सचे गुर की साची सीख तन मन शीतल साच परीख। जल पुराय रस कमल परीख शब्द रते मीठे रसी। हुक्म संजोगी गढ़ दस द्वार पंच बछे मिल जोत अपार। आप तुले आपे बनजार नानक नाम सवारण हार। गौड़ी महला पहला। जातो जाए कहां ते आवे कै उपजे कै जाए समावे। क्यों बाध्य क्यों मुक्ति पावे क्यों विनाशी सह समावे। नाम हृदय अमृत मुख नाम नर हर नाम नर हर नह काम रहाओ। सहजे आवे सहजे जाए मन ते उपजे मन माहे समाए। गुरमुख मुख तो बंद ना पाए शब्द विचार छुट्टे हर नाए। तर पर पंखी बो निसवास सुख दुखिया मन मोह बिनास। साज बिहाग तके आगास दस दस ताबे कर्म लिख आस। नाम संजोगी गोयल थाट काम क्रोध फूटे बिख माट। बिन बकर सुनो कर हाट गुर मिले खोले बजर कपाट। साधु साध मिले पूर्व संजोग सच रहसे पूरे हर रोग। मन तन दे लै सह सुभाए नानक तिनके लागो पाए। गौड़ी महला पहला। काम क्रोध माया में चीत काम क्रोध माया में चीत। झूठ विकार जागे हित चीत पूंजी पाप लोभ की कीत। तर तारी मन नाम सुचीत वाह वाह साचे मैं तेरी टेक। हों पापी तू निर्मल एक रहाओ। अगन पानी बोले पढ़वाओ जेहवा इंद्री एक सुहाओ। दृष्ट विकारी नाही भाओ भाओ आप मारे ता पाए नाओ। शब्द मरे फिर मार ना होए बैन मुए क्यों पूरा होए। पर पंच व्याप रहे मन दोए थिर नारायण करे सोहे। बहुत चढ़ो जा आवे वार ताके बहुत दर के मार। सच सलाही तन गुरद्वार नानक दर कर एक ओंकार। गौड़ी महला पहला। उल्ट्यो कमल ब्रह्म विचार अमृतार गगन दस द्वार। त्रैबण वेद आमरा रे मन मेरे भरम न कीजे। मन मानिए अमृत रस पीजे रहाओ। जन्म जीत मरण मन मान्या आ मुआ मन मन ते जान्या। नजर पई कर करते जान्या जत सत तीर्थ मजन नाम। अनेक बिथार करो किस काम नारायण अंतर जाम। आन मनो तो पर कर जाओ कह जाचो नाही को था नानक।